सिमरन परियारले गाउनुभएको डाँफे चरी सुने श्रोता। अब हामी लाग्छौँ आजका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा तोकिएको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर भावको जानकारी लिनका लागि सुरुमा अमेरिकी डलर एकको खरिद दर 152.89 रुपियाँ, बिक्री दर 153.49 रुपियाँ। युरो एकको खरिद दर 174.47 रुपियाँ, बिक्री दर 175.16 रुपियाँ। पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर 203.13 रुपियाँ, बिक्री दर 203.93 रुपियाँ। स्विस फ्रान्क एकको खरिद दर 185.79 रुपियाँ, बिक्री दर 186.52 रुपियाँ। अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर 108.28 रुपियाँ, बिक्री दर 108.70 रुपियाँ। कनेडियन डलर एकको खरिद दर 108.56 रुपियाँ, बिक्री दर 108.98 रुपियाँ। सिङ्गापुर डलर एकको खरिद दर 119.65 रुपियाँ, बिक्री दर 120.12 रुपियाँ। जापानी जेन 10 को खरिद दर 9.69 रुपियाँ, बिक्री दर 9.73 रुपियाँ। चाइनिज युआन 1 को खरिद दर 22.80 रुपियाँ, बिक्री दर 22.89 रुपियाँ। साउदी अरेबियन रियाल 1 को खरिद दर 40.71 रुपियाँ, बिक्री दर 40.87 रुपियाँ। कतारी रियाल 1 को खरिद दर 41.95 रुपियाँ, बिक्री दर 42.11 रुपियाँ। थाई भाट 1 को खरिद दर 4.60 रुपियाँ, बिक्री दर 4.62 रुपियाँ। युएई दिरहम 1 को खरिद दर 41.63 रुपियाँ, बिक्री दर 41.79 रुपियाँ। मलेसियन रिंगित 1 को खरिद दर 37.47 रुपियाँ, बिक्री दर 37.62 रुपियाँ। स्वेडिस क्रोनर 1 को खरिद दर 15.49 रुपियाँ, बिक्री दर 15.55 रुपियाँ। डेनिस क्रोनर 1 को खरिद दर 23.34 रुपियाँ, बिक्री दर 23.43 रुपियाँ। हङकङ डलर 1 को खरिद दर 19.49 रुपियाँ, बिक्री दर 19.57 रुपियाँ। साउथ कोरियन वन 100 को खरिद दर 11.21 रुपियाँ, बिक्री दर 11.25 रुपियाँ। कुवेती दिनार 1 को खरिद दर 497.20 रुपियाँ, बिक्री दर 479.15 रुपियाँ। बहराइन दिनार 1 को खरिद दर 405.53 रुपियाँ, बिक्री दर 407.12 रुपियाँ। र अन्तमा उमानी रियाल 1 को खरिद दर 397.11 रुपियाँ, बिक्री दर 398.67 रुपियाँ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा तोकिएको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर भाव पुरा भयो।